इति श्री महागणेश पंचरत्न स्तोत्रम् समाप्तम्। ओम रिरि सिरिदाता गौरीपुत्र महागणपतिदेव की जय। ओम बुढ़िये शंकर भोलेनाथ की जय।

ओम बोलिए श्री दीप नरे भगवान की जय, विश्व गुरुदेव की जय, परमहंस स्वामी योगानंद जी की जय हो।

0: हथेलियों को अच्छी तरह मल लीजिए, आंखों पर लगा लें। परम पूज्य पाद स्वामी जी महाराज, जो स्वयं ही करुणा और दया की प्रतिमूर्ति हैं, पूज्य स्वामी जी महाराज, आदरणीय डी जी साहब, आदरणीय स्वामी जी और उपस्थित सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, सचमुच ये भारतवर्ष देश हमारा एक ऐसा देश है जो एक दूसरे को इतना मतलब बताया गया हमारे वेद के अंदर कि हे मनुष्य, तुम एक दूसरे से ऐसा प्रेम करो जैसे गाय अपने नवजात बछड़े से प्रेम करती है। उसमें ये बताया गया है कि जैसे गाय क्या करती है, अपने बछड़े को ना चाट चाट करके, अपनी जीभ से चाट चाट करके उसकी सारी मलिनता को दूर करती है, वैसे मनुष्यों तुम एक दूसरे से प्रेम करो। और तुम में ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, अज्येष्ठासु अकनिष्ठार्थ एते सम भ्रात्रो वावृदु, सब मनुष्य तुम्हारे भाई भाई हैं। ये जो पृथ्वी है, माँ है और परमात्मा ही तुम्हारा पिता है। तो जो नेपाल के अंदर जो इतनी बड़ी जो ऐसी घटना घटी भूकंप की, और पूज्य पाद स्वामी जी महाराज ने कितना आप सबके सहयोग से जो उन्होंने भेंट दिया, वो बहुत ही इनके हृदय की करुणा और दया का ही प्रतीक है। तो हम जीवन में यही मनुष्य के साथ जाता है, जैसे कि अभी गुरु जी महाराज का बता रहे थे कि मनुष्य के साथ केवल दो ही चीज़ें जाती हैं, एक तो उसका किया हुआ कर्म जाता है, एक उसकी प्रभु का नाम जाता है, क्या ना। जब मनुष्य मरने जाता है तो उसके साथ दो ही उसके जाते हैं, कि एक अच्छा कर्म परमात्मा का मतलब किया हुआ परमात्मा का नाम, एक किया हुआ उसका कर्म। तो हम लोग जितना भी हो सके वहाँ के लिए, जो भी आपकी अपनी श्रद्धा हो, भक्त जितना भी आपसे बने, तो हम नेपाल वालों के लिए अधिक से अधिक कुछ करें। मैं भी अपनी तरफ से कुछ करना चाहती हूँ, पूज्य स्वामी जी को आश्वासन देती हूँ, और आप सब लोग भी अधिक से अधिक करें, क्योंकि यही एक समय आता है जब हमारी परीक्षा होती है कि हम कितना दूसरों के लिए कर सकते हैं। अपनी आत्मा के तुल्य ही हम दूसरों की आत्मा को तुलें, जैसे हमारे जैसे अभी पूज्य स्वामी जी महाराज ने बताया, वसुधैव कुटुम्बकम, सारी वसुधा ही कुटुम्ब है। यस्मिन सर्वानि भूतानि आत्मै वा भूत विजानत तत्र को मोह कह शोक एकत्वम मनु पश्यत, सब मनुष्य अपनी आत्मा के तुल्य है, जैसे हमारी आत्मा है वैसे ही है। और पूज्य स्वामी जी का तो मैं आपको क्या बताऊं, उनके अंदर पशु पक्षियों के प्रति भी इतना ज़्यादा है, गाय के प्रति इतना ज़्यादा है। कहते हैं ये मूक प्राणी है, स्वामी जी महाराज कहते हैं ये मूक प्राणी है, कि इनको ये लोग बोलते नहीं हैं, तो इनके प्रति ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। इसी तरह प्राणी मात्र के प्रति इनका प्रेम है, तो हमारे हृदय में भी प्राणी मात्र के प्रति प्रेम हो, यही आज हमें पूज्य स्वामी जो हमें प्रेरणा देते हैं। पूज्य गुरुदेव माधवानंद जी महाराज जी कहते थे, सेवा ही परमो धर्म, सेवा सबसे बड़ा धर्म है, सेवा से बढ़कर कुछ नहीं है। तो सेवा, प्रेम, करुणा, दया, यही मनुष्य के साथ एक हो जाता है। प्रभु भगवान कहते हैं कि वो नर मतलब पूजा तुम कुछ नहीं करो, लेकिन यदि दूसरों की तुमने सेवा कर ली, दूसरों के प्रति अपने दुखों को दूर कर दिया, इससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं। आपको एक उदाहरण देती, एक महात्मा जी थे, रोज बहुत साधना करते थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन उनके मन में फिर भी शांति नहीं थी। एक बार कोई रात को व्यक्ति उनका बहुत करा रहा था, बहुत दुखी था, बहुत करा रहा था, बहुत ज़्यादा दुखी था, तो उस समय उन्होंने उसकी रात भर सेवा की। तो उसका फल ये हुआ कि वो सेवा से सुबह जब वो उठे, महात्मा जी कहते हैं जीवन में मुझे ऐसी शांति कभी नहीं मिली जो आज मिली है, मत वो शांति सेवा से मिलती है। तो दूसरों का कष्ट दूर करके तो देखो तो सही, कितना हृदय में एक शांति मिलती है, कितना मतलब वो होता है। तो बहुत ज़्यादा हमें तो बस यही जीवन का, हमारे स्वामी जी महाराज जी, हमारे जो गुरु जी थे, वो कहते थे बस दूसरों की सेवा करो। आते ही वो यही पूछते थे, दूसरों को दूध मिला नहीं मिला, छाछ मिली नहीं मिली, हर समय दूसरों की सेवा के लिए कहते, दूसरों के कष्ट को दूर करो। परमात्मा इसी में, सब मानव के अंदर भगवान समाया हुआ है, ईश्वर सबके अंदर है, सबके अंदर समाये हुआ है। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा ना, ईशावास्य मेदगुम सर्वम यत किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता माँ गृद कस्य स्वीदनम, ये सारा संसार ईश्वर से व्याप्त है। जब मनुष्य ये विश्वास कर लेता है कि सब जगह ईश्वर है, सर्वत्र सब में ईश्वर है, तो वो कभी किसी से घृणा नहीं करेगा, सबसे प्रेम करेगा। तो हमें सबसे अपना मानना है, सबको अपना मानते हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। सबको ईशा मसीह ने जो कितना उनका था कि जो उनको वो उनको जो गोली वो जो चढ़ा रहा है, कील ठोक रहा है, उनको कहता है प्रभु इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कितना वो था। तो मैं अधिक क्या कहूँ, जो स्वामी जी महाराज से बस इतना ही निवेदन करती हूँ कि मेरे हृदय के अंदर भी वो आशीर्वाद दें कि मैं भी लोगों के अधिक से अधिक लोगों के प्रति करुणा रखूँ, लोगों के प्रति दया करूँ। दया धर्म मूल, दया धर्म का मूल है, मैं अधिक कुछ नहीं कह जाती। और हमारे योग शास्त्र में भी यही सिखाया जाता है, योग का अर्थ ही होता है जोड़ना, अपनी आत्मा को उस परमात्मा से जोड़ने को योग कहते हैं। मनुष्य अपनी आत्मा को परमात्मा से तभी जोड़ सकता है जब उसके वो हो जाए, जब उसका मन पवित्र हो जाए। कहा ना भगवान कहते हैं मोहि कपट छल छिद्र न पावा, कि जब तुम्हारा मन पवित्र हो जाएगा तो हमारी आत्मा स्वयं ही उस परमात्मा से जुड़ जाएगी, और परमात्मा से जुड़ेगी तो हमारे को सुख और शांति व आनंद मिलेगा। तो हम नर की सेवा करें, भगवान इससे सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। ओम शम।
1: So you want me to appeal to my
2: in America.
1: Okay.
2: To Yoga and Daily Life Foundation in Austria.
1: Look, Yoga and
2: Daily Life Foundation Austria or India?
1: Okay.
2: India. Yoga and Daily Life.
1: Yoga
2: Foundation.
1: In
2: Yoga in Daily Life.
1: Yoga in Daily Life.
2: Foundation
1: in Austria.
2: No, New Delhi.
1: New Delhi. Friends, Swamiji. Swamiji. DG, Pushpaji, I'm no speaker. I've come to Jaipur to actually get treatment for allergies. All my life I've suffered this, and the only recourse is yoga. It is sad when a calamity happens. Calamities, sorrow, transgresses boundaries. It is universal. And it is time we have to look beyond ourselves, look beyond our boundaries, and stop looking at differences about nations, caste, creed, races, and to think of humanity as one. The recent disaster in Nepal hits home, and I appeal to all of you and to all my friends who may hear this in the Silicon Valley, in the United States, where I live, that friends, let's come together, let's help our neighbor, let's donate to Yoga in Daily Life. Yoga in Daily Life Foundation. It has a branch office in Delhi, and all of you who know me, who may want to contribute to this, when I get back, please contact me, and we'll find a way to get the money, and we'll get the funds to Nepal. And I personally announce that I will give a check of 51,000 to this cause. Thank you.
2: In rupees?
1: Yes.
2: Thank you. Ke dollar?
1: Did I say?
2: Among us, there is sitting one Brahma Rishi, and he is going to sing a bhajan of the Daya Karuna Shanti, विश्व शांति नेपाल के लिए। तो ब्रह्म ऋषि जी आइए आप, एंड प्लीज सिंग वन भजन दर्द दुख दूर हो जाए, दया हो जाए। मिश्री लाल जी, ब्रह्म ऋषि,

0: Pithavla. Nagor. Catch me there.
1: Nagor. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। सभी सज्जनों, 84 लाख जोन के अंदर है जो सबसे श्रेष्ठ जोन बताई है वो मानव तन है। क्या बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। तो ऐसी क्या चीज है कि भाई मानव में ऐसी क्या एक विशेषता है जिससे हम बार बार मनुष्य बनेंगे, और वो भी भारत खंड के अंदर बनेंगे। 84 लाख जोड़ में 27 लाख घासपूस, 9 लाख जलपान, 11 लाख कीट पतंग, 10 लाख पखेरु, 23 लाख पशु और 4 लाख मान का जोड़ है। 4 लाख मान का जोड़ के अंदर कौन मनुष्य है ये देखने का है। 3,99,999 मनुष्य है, लेकिन बिना सिंह पूछ के। हमारे माधवानंद जी महाराज गुरु जी कहते थे बिना सिंह पूछ के, जो मान लो ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, दया नहीं है, समा नहीं है, शीलता नहीं है, सुचिता नहीं है, समता नहीं है, तो मनुष्य कहना चलना लायक नहीं है। तो महापुरुषों ने कहा कि लाखाम सम्राट अपने धर्म चक्रवर्ती माधवानंद जी महाराज, सार्वभौम जगत गुरु महामंडलेश्वर परमहंस योगी राज श्री महेश्वरानंद जी महाराज, ऐसी दिव्य आत्माएं हम, ये जो परमात्मा ने भेजी है महाराज, इनको परमात्मा ने स्वयं भेजा है अपने रूप के अंदर। क्या जहां दया है कबीरा हम आए संसार में, कबीरा हम आए संसार में, जग हंसे हम रोए, बहुत खुशी होती है। ये जीव आता ना महाराज संसार के अंदर, परिवार कुटुंब में सब में कुछ ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जगरो। तो आज भी जो है महात्मानंद जी महाराज के, मैं उनके सानिध्य में मेरे को मैं ऐसा मेरा सौभाग्य मिला है, और कई जन्मों के मेरे पुण्य उदय हुए तब मैं इनके शरण में आया हूं। क्या तो आज भी मेरे को ऐसा दिन नहीं जाता, ऐसा कोई घड़ी पल नहीं जाता है जिसमें मेरे हृदय के अंदर जो महात्मानंद जी महाराज जो है ना मेरे को पकड़ के उठा के लेके जाते थे कि चलो। और उनकी उम्र क्या उस समय 80-82 साल की उम्र, और इतना प्रेम कि मैं महाराज जी श्री को। तो इसके बारे में एक बता दूं, धर्म के बारे में, दया के बारे में, करुणा के बारे में,

नाथ हरे। आज जो नेपाल पर जो संकट आया है उसके अंदर हम ठीक है, हमारे से आर्थिक जो हो रही है वो तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा हम अगर वहां जो भी आज भाई बहन माता पिता किसी भी परिवार किसी कुटुंब में दुख आया है, हम यहाँ बैठे बैठे उनके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि भाई आपका दुख नहीं हमारा सभी का दुख है। तू जान बूझे कोई पाप न करे, हो जाए तो पश्चाताप न करे, ये सब लीला उस ईश्वर की, तू ध्यान

हरी चंडी बताएंगे। हमारे रिस्पेक्टेड वसुंधरा जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज सो द ग्रीन लाइट एंड वी कैन सेंड सम ट्रक एंड सम फूड। सो थैंक यू वेरी मच टुडे, व्हाट एवर यू विल गिव आई विल अप्रिशिएट इन नेम ऑफ द नेपालीज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। ओम रिमेन विल ओम, धर्म विल रिमेन द धर्म। And if you like to practice, okay. If you don't like to practice, it's okay. But if you practice yoga, it has nothing to do with my religion or your religion. It has to do with your good health, your peace of mind, anti-stress, and for the spiritual development, it is the science. Therefore, Om should remain. You all should write, please, a letter immediately, as soon as possible. बोल सतगुरुदेव की, दीप नारायण भगवान की, माधव कृष्ण भगवान की, सनातन धर्म की। ओम, सभी बोले।

श्री श्री देव पुरी समादेव धर्म सम्राट सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान सत्य सनातन ओम शांति शांति

पर प्रभु जी साक्षी सुदयात्मा। दर ध्यान सोहम मुनि मोहन सुख रूप से जा ध्यात्मा प्रभु सुख।

0: अलकपुरी जी महादेव की
1: जय।
0: सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान
1: की जय।
2: विश्वगुरु महामान्य स्वामी
1: गुरुदेव की जय।

की आराध्य भगवान दीप नारायण भगवान की, सतगुरु स्वामी माधवानंद जी भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय।

0: ओके वी आर स्टार्टिंग सुदीप नारायण भगवान की जय। पहले आचमन या पवित्र पवित्र
1: जय आचमन ओम पुरातु ओम नारायणाय नमः नारायणं मां पुरातु ओम माधवाय नमः माधवं मां पुरातु हस्तो वृक्षऋषिकेशवाय गोविंदाय नमो नमः अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निवचो ज्योतिवर्चः स्वाहा सूर्यो वचो ज्योतिवर्चः सूर्यः स्वाहा। भगवान को दीपक दिखा कर
0: कुछ करना है आश्रम वगैरह सब हो गया
1: ले लीजिए आश्रम वगैरह हो गया उसी आसन से तो यहाँ आवश्यकता नहीं अभी पूजन से उठ के आया हाथ में अक्षत पुष्प लेकर के अग्नि देवता का आवाहन करना मतलब प्रणाम करना है ओम अग्निदूतं पुरोदधे हव्यवाहम् उपप्रवेदेवाम् आसादयादिया भूर्भुवस्वः अग्नये नमः ध्यानं देहार्थे पुष्पम् अक्षतां च समर्पयामि नमस्करोमि। कुंड के बाहर ही इसको चढ़ाई बीच वाली जो सीढ़ी है भूर्भुवस्वः अग्नये नमः ध्यानं देहार्थे अक्षतां पुष्पम् समर्पयामि नमस्करोमि। थोड़ा सा जल से अभिसिंचन कर दीजिए कुंड के अंदर थोड़ा सा जल से ओम शुद्धवाला सर्वशुद्धवालो मणिवालसाश्विना श्वेता श्वेताक्षोर्णस्य रुद्राय पुषुदे कृणाजामा अवलिप्ता रौद्रानुपूर्वापारजन्या। जो ये लोग बैठे हुए हैं इन सबके ऊपर थोड़ा थोड़ा जल और जो पूजन की जो सामग्री है इसमें थोड़ा थोड़ा जल पुष्प से लेकर के सभी जगह चढ़ा दीजिए। पापो विश्रामयो सर्वदेवानां भवे
0: क्या
1: मुखम्या सर्वदेवानां भवे भुक्त विभुक्त तथा पितृणां च नमस्तस्मै विष्णवे पावकात्मने। इस श्लोक में बताया गया है कि अग्नि देवता कैसे हैं। चत्वारि श्रृंगा उनके जो अग्नि देव हैं उसमें उनके चार सिंह हैं। त्रयो अस्य पादा उनके तीन पैर हैं।
0: It is said in the shastras that he has चार क्या है
1: पैर चार सिंह हैं उनके
0: सिंह या सिर
1: श्रृंग सर
0: For not string, it's a Sanskrit word for heads. So it is said in this mantra that fire god has four heads.
1: Trayo asya pada, teen pair hain unke.
0: Three legs.
1: Dve shirse, do jo hain unke sar hain.
0: To char kya the pehle?
1: Sting nahi hote hain, sting.
0: Okay, four horns, three legs, and two heads.
1: सात हाथ हैं उनके
0: सेवन हैंड्स
1: और सात ही जिह्वाएं हैं
0: एंड सेवन
1: टंग्स जिससे वो हवन ग्रहण करते हैं
0: विद व्हिच ही रिसीव्स व्हाट वी ऑफर हिम
1: वो महादेव के बहुत ही ज्यादा अनंत प्रिय हैं
0: एंड ही इज वेरी लव्ड बाय महादेव शिव जी।
1: ऐसे जो अग्नि देव हैं उनको हम प्रणाम करते हैं
0: एंड टू दैट अग्नि देव टू दैट फायर लॉर्ड वी मेक प्रणाम
1: और वो हमारे जो हम भी हवन कर रहे हैं तो उसमें जो गलतियां हुई हो गलतियां हो उन्हें क्षमा कर हमें हम जो भी प्राप्त हुई जो हमारी वस्तुएं हैं उनको स्वीकार करें
0: And
1: और
0: we
1: हमें
0: we
1: हमारे कर्तव्य
0: to...
1: पालन में मार्गदर्शन दें।
0: We are praying to Agnidev, to Fire Lord, that whatever mistakes in chanting or in offering we will do in this yagya, we are asking for forgiveness and whatever we can with our shakti, bhakti, Vairagya, whatever we are offering, please accept it and fulfill all our wishes which we asked you for.
1: जो पांच तत्व हैं, उन पांच तत्वों से हम सारी चीजें ले रहे हैं। जैसे वायु है, तो वायु से हम सांस ले रहे हैं।
0: From all the five tattvas, we are taking something from the air, wind. We are taking breathing from water. We are drinking water.
1: तो जो पांच तत्व हैं उन सभी पांच तत्वों को प्रणाम करके उन सभी को ये निवेदित है
0: एंड व्हाटएवर वी आर ऑफरिंग वी आर आल्सो ऑफरिंग देम।
1: आगे प्रारंभ करते हैं हवन की प्रक्रिया। थोड़ा सा पुष्प और अक्षत लेकर के ध्यान करना है। नवग्रह जो देवता है
0: वी आर डूइंग ध्याना वी आर मेडिटेटिंग टू ऑल द नाइन ग्रह नाइन प्लैनेट्स
1: प्लैनेट्स
0: Back and let it be. Later we'll clean up the mess. Okay.

0: कि भगवान के दो पुत्र हैं, धर्म और अधर्म। भगवान के धर्म सामने तरफ रहते हैं और अधर्म पीछे रहते हैं।
1: There are two sons of God. One is dharma and one is adharma. Dharma is in front and adharma is in the back.
0: तो दोनों को आहुति मिलती है, जो अग्नि के अंदर जो आहुति जाती है वो धर्म लेते हैं, और अधर्म को जो पुण्य के बाहर जाती है वो अधर्म।
1: So the thing which is going in the fire is for dharma, and those which is just falling out is going to adharma, so that both sons can fulfill that.
0: हमारा प्रयास ये रहे कि हम अंदर ही डालें, जिससे धर्म की वृद्धि हो और हमारे गुरुजन जो स्वस्थ हैं।
1: And we should try that it goes more inside, that it goes for dharma and less for adharma. But if it goes out, it's okay.
0: ठीक है, आगे प्रक्रिया प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्व स्वः गणेशाय स्वाहा।
1: स्वाहा।
0: एक कटोरी में जल लेकर के सामने रख लीजिए आप। चल दिशा थोड़ा थोड़ा। वहीं से बैठे बैठे द्रव्य दक्षिणा इसलिए हम चढ़ाते हैं, कदाचित जैसे जो हम सामग्री लेकर के आते हैं उसमें जो दोष हो अथवा उसके अतिरिक्त जो भगवान को प्रिय हो, वह उससे उसकी पूर्ति हो जाती।
1: The reason why we offer dakshina or money is because if we couldn't find something or there was some shortage in any type of samagri offerings or things that we bought, then that covers that in that way.
0: क्योंकि पहले जो दक्षिणा होती थी वो धातु की होती थी।
1: Because in the olden times,
0: जैसे सोना चांदी।
1: In the olden times, the way of dakshina used to be any type of metal like gold and silver because that was pure, but nowadays we don't have that, so we use money. I mean, we have it, but we don't want.
0: तो उसके हिसाब से हम ये देवताओं को प्रणाम करके थोड़ा सा अक्षत लेकर के जो भी आपने देवी देवताओं को बुलाया है उनसे प्रार्थना करने हैं, आपके आवाहन पूजन में हमसे जो गलती हुई हो, जो कम अथवा ज्यादा जो सामग्री चढ़ गई हो, उन्हें क्षमा करके हमारे जो गुरु जी हैं उनको स्वास्थ्य लाभ प्रदान करें, और हमारे जो भी विश्व में जो भी हमारे शिष्य इत्यादि हैं उनको उत्तर वृद्धि देने की कृपा करें। इनको सबको समझा दीजिए।
1: Now, whatever we chanted, or if we did any mistakes, we will ask for forgiveness from Gurudev, from Fire God, from Shivji, from everyone, and we will pray that all the world is remaining in peace and unity, good health for Swamiji, and whichever wish you ask for in your inner minds when taking the Sankalpa, that they come true, we are going to pray for that. पापोहं पापकर्माहं पापात्मा
0: पापात्मा पापसंभवं
1: त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरोहर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यत् पूजिता मया देव परिपूर्णं ततस्तु मे अपराणं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर
0: यान्तु देवगणा सर्वे पूजामादाय मम किम् तत्र गच्छ उदासन यत्र ब्रह्मादय सर्वे तत्र गच्छ उदासन पूर्वस्व सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः।

महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्नाथ श्रीजगन्नाथ मद्गुरु श्रीजगद्गुरु ममात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः Salutations to the Cosmic Self. Salutations to Srila Purja Siddhapeetha Parampara.

हरि ओम, आलिज कुटे गो, हरि ओम, थैंक यू वेरी मच। हाँ हरि ओम, थैंक यू। या या गुड, हरि ओम। या राधा, ए राधा तू तो राधे करते गी है, तो राधा कौन ही हमें। हरि ओम अगेन। मैं गिव देम दिस वन, दैट इज वेरी गुड। ओके हरि ओम। कम कम कम कम कम कम कम कम दक्षिणा दिव सी, या दक्षिणा मुस्मान साइन, या सो दैट इज ओके। या हरि ओम, थैंक यू। टू योर लिटिल चिल्ड्रन, ओके।